0: डेरा मुबारक।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं क्वीन ऑफ सैयद फ्रॉम क्वेटा। मैंने बलरा में यूज और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी यूज करें। आप सबको बलरा तमाम टीम को दोस्तों फैमिली को मेरी तरफ से बलरा की फेसबुक भी बहुत बहुत मुबारक।
0: अस्सलाम वालेकुम ग्रानो मिला वालो जय मिनाला फ्री जी दे जमरोद न सा कुतुल सा दे बलडो न सर गेरा डेरा डेरा मुबारक सा और डॉक्टर से एक दुकान दुकान में खड़े खान जमा डॉक्टर से कुछ कम टीम से तत्काल खबरी मेरी कर सर गेरा नाम उसकी करा रहा है कि तब जान जान लगती को नफरे जी। अस्सलाम वालेकुम زین شبنم دانش زما د طرف نه د بلډو لیز ډیر ډیر مبارک شه جی د بلډو نه کیک مونږ مراوړې د بلډو نه سره مونږ ډیر مینه کوو پکاره چې ټول

टेंगे बातें नहीं बल्कि रिश्ते बनाएंगे और कोशिश यही होगी कि जब प्रोग्राम खत्म हो तो आपके लबों पर एक मुस्कुराहट और दिल में एक खूबसूरत एहसास जरूर बाकी रहे। तो मुझे आवाज के हवाले से बताइएगा कि मेरी आवाज आपकी समातों तक ठीक जा रही है, मतलब मींस कि मेरी आवाज ओके क्लियर लाउड और अच्छे तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं ना। अगर अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर रहे तो ये है कि अच्छे से एंजॉय कर लीजिए भाई। आओ फमा दे ठोल करे खबर को, आओ पता दे यो दादा खबर दे जड़े दी चीना वही कुर्बान वही जार पखैर न जी पखैर पखैर पखैर ठोल और दुन को तचकम दन प्रोग्राम के मंग रोद कुमिज कम दन प्रोग्राम के हर कले हुआ यो प्रोग्राम के वेलकम को हुआ नमी और दिन के सुमर दी अगीद हम दीन अलावाज मंग जाड़ा और दिन के सुमर दी नागीद हम कम दन प्रोग्राम के हर कले हुआ यो ताहिर जमान जमानों दे जी प्रोग्राम के शामिल दो तो पर प्रोग्राम के रातल लपारिश के मन तास बा मुंग ता टेलीफोनान बखवे या मैसेज न मुंग तरा ले गई या यो दद मौजू बम वी मौजू बा हवाले से राहत लबम खबर ये तरीके हो जी नो जनाब कसोक प्रोग्राम के मैसेजेस कॉल वर्ल्ड नो मैसेजेस कॉल लपारा 0334440976 पदी नंबर बान तास कांटेक्ट कॉल शे पदी नंबर बाने तास अखपल पैगामात अखपल मैसेजेस के मन माथा राले गले शे जी 0334440976 एंड यो यो मैसेज कम देनो माता उस के उसने कम देनो यो यो मैसेज ओके माता लगू है चिजमा आवाज ओके दे जमा साउंड कम देनो तस्ता क्लियर दर रवान कना या चर दे कम देनो समसला मसला खैर लग लग मामूली मामूली मसला ये जे तस पर ये खबर बन कम देनो अखबल खातिर बना दरना हो ये लगे कम देनो तस पर खपकी मना سید دے کنا خبگنج گم دینو اسیم سید پارا اور رد پارش گم دین خصوصی خنے یا او چکم خلق گم دین خبگان کی نو دا غیر رنگ گم دین بیا توری گی او چکلا رنگ تور شین بندج گم دین ٹینشن علی او کلا ٹینشن چ علی نو بیا بس ڈاکٹر لزی او چ ڈاکٹر لزی نو ڈاکٹر بیا چ گم دین س گئی او ڈاکٹر گم دین بیا انجیکشن لگے او چ انجیکشن لگے نو بندا وئی بیا وئی وئی وئی وئی وئی وئی خدایا پاک نو قربان ضرور برا ضرور کم دن اخبل موجود گئے احساس بمال رکھا ہوئی 0938 نہ بلکہ کم دن 0334440976 ٹریک انجوائے کیجیے ٹریک نے بعد واپس رازو اچر تلا نشی ماسرا یعنی طاہر زمان سروسیج

वेल लिसनर्स, प्रोग्राम के स्टैंड अप में मैं ये यहाँ बात करना चाहूंगा। इंतहाई माजरत, आज थोड़ा फिर जो है ना गल्ला साथ नहीं दे रहा। सो लिसनर्स, कभी कभी इंसान किसी के चेहरे का नहीं उसके लहजे का असीर हो जाता है। एक नरम सी आवाज, एक सादा सा जुमला, एक खलूस भरा अंदाज और दिल भी इख्तियार कह उठता है कि शायद यही वो एहसास है जिसे मोहब्बत कहते हैं। क्योंकि मोहब्बत हमेशा आंखों से शुरू नहीं होती, बाज़ औक़ात ये कानों से शुरू होती है, सीधी दिल में उतर जाती है। आपने भी कभी ना कभी जो है ना जरूर महसूस किया होगा कि कुछ लोग ज्यादा खूबसूरत नहीं होते मगर जो है ना उनकी बातें बेहद खूबसूरत होती हैं। वो जब बोलते हैं तो लगता है जैसे किसी ने थके हुए दिल पर ठंडी हवा का झोंका रख दिया हो। जैसे लफ्ज नहीं दुआ बोल रही हो, जैसे जुमले नहीं मोहब्बत सांस ले रही हो। और मेरे स्वीट लिसनर्स, FM 94 रेडियो दिलबर स्वाबी के जितने भी दोस्त अहबाब मेरी आवाज सुन रहे हैं, जनाब सच्ची मोहब्बत शायद यही है जहां गुफ्तगू खत्म ना हो, जहां खामोशी भी बोझ ना लगे और जहां एक दूसरे को सुनना फर्ज नहीं बल्कि जो है ना खुशी महसूस हो, जहां हर छोटी बात में अपनायत हो और हर मुस्कुराहट में दिल का सुकून छुपा हो। दो लोग जब वाकई एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उनकी बातें मौसमों से शुरू होकर ख्वाबों तक पहुंच जाती हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, या वो एक दूसरे से पूछते नहीं कि दिल कैसा है, वो आवाज सुनकर ही अंदाजा लगा लेते हैं। वो लफ्ज नहीं गिनते, एहसास गिनते हैं और यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा रिश्ता बनाता है जिसे ना वक्त तोड़ सकता है ना फासले कमजोर कर सकते हैं। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत तोहफा शायद कीमती चीज नहीं होती जी, बल्कि वो चंद लम्हे होते हैं लिसनर्स, जब कोई पूरी तवज्जो से आपकी बात सुनता है, आपके अधूरे जुमले मुकम्मल कर देता है, आपकी खामोशी में भी छुपी थकन को पहचान लेता है। और सिर्फ इतना कहना कि मैं हूं ना, यकीन मानिए ये चार लफ्ज के जख्मों का मरहम बन जाते हैं। और कभी कभी दो दीवाने घंटों बातें करते हैं, न उन्हें वक्त का एहसास होता है ना दुनिया की खबर रहती है। मेरे प्यारे लिसनर्स, कभी बचपन याद आ जाता है, कभी बारिशें, कभी चांद, कभी सितारे और कभी सिर्फ एक दूसरे की हंसी। ऐसी गुफ्तगू में मोहब्बत बोलती नहीं महसूस होती है, दिल के नैखानों में आहिस्ता आहिस्ता उतरती चली जाती है। तो आज की महफिल में आप सबसे बस इतना सवाल है कि अगर किसी के पास देने के लिए सिर्फ खलूस भरे लफ्ज हो, नर्म लहजा हो, सच्ची तवज्जो हो और वक्त हो तो क्या ये सब मिलकर मोहब्बत की सबसे खूबसूरत तस्वीर नहीं बन जाते? सोचिएगा लिसनर्स, क्योंकि बाज़ औक़ात एक दिल जीतने के लिए सिर्फ एक सच्चा जुमला ही काफी होता है। सो इस हवाले से मुझे आपने जरूर बताना है, मुझे आपने जरूर समझाना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी समझ में बातें नहीं आती अक्सर। हाय।

वेल स्वीट लिसनर्स, एक मरतो फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ ताहिर जमान आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के संग संग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम 94 रेडियो दिलवर 100 से जे। मेरे प्यारे लिसनर्स, कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, कभी कभी मेरी मतलब सोच में एक बात आती है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा और आप लोगों का ये रिश्ता आखिर है क्या। ना हम रोज एक दूसरे को देखते हैं, ना आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करते हैं, ना ही एक शहर की गलियों में चलते हैं, फिर भी ना जाने क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे बरसों की जो है ना एक जान पहचान हो, जैसे दिल एक दूसरे को जो है ना पहचानते हो, जैसे आवाजों ने फासले मिटा दिए हों। मेरे प्यारे लिसनर्स, यही तो खूबसूरती है रेडियो की, यही तो हुसन है इस महफिल का। एक तरफ मैं बैठा हूँ माइक्रोफोन के इस साइड पे, अपने दिल के लव समेट कर आप तक भेज रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो है ना आप कहीं अपने घर में, कहीं सफर में, कहीं छत पर टहलते हुए, कहीं चाय का कप हाथ में लिए हुए और मेरी आवाज को अपने दिल में जगह दे रहे हैं। मेरी आवाज यहाँ से उठती हुई आप लोगों तक पहुँचती है, मेरी आवाज यहाँ से उठती है हवा के दोष पर सफर करती है, लहरों से होते हुए आप लोगों तक पहुँचती है, और फिर आपकी खामोश मुस्कुराहट, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें वापस मेरे दिल तक आ जाती हैं। यही तो तेरी और मेरी बातें हैं जनाब। यहाँ वो अनदेखी लड़ी है जो न आंखों से नजर आती है, न ही हाथों से छुई जा सकती है, मगर मेरे लिसनर्स, दिल इसे जो है ना हर लम्हा महसूस करता है। मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, फिर शायद आप मुस्कुराते हैं, कभी किसी पुरानी याद में खो जाते हैं, कभी किसी अपने को याद कर लेते हैं, और कभी दिल ही दिल में जो है ना कहते हैं कि हाँ ये बात तो मेरे दिल की थी, और यकीन जानिए इस लम्हे ये ऐसे लम्हे मुझे महसूस होते हैं लिसनर्स कि हमारी गुफ्तगू सिर्फ जो है ना अल्फाज की नहीं रही है, बल्कि एहसास का एक सफर बन चुकी है। प्रोग्राम का नाम तेरी और मेरी बातें यूं ही नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ जो है ना मेरी आवाज होती है, बल्कि आपके दिल की धड़कनें भी शामिल होती हैं लिसनर्स। यहाँ मेरी कहानी अधूरी है अगर इसमें आपकी मुस्कुराहट शामिल ना हो, यहाँ मेरे लफ्ज खामोश हैं अगर इनमें जो है ना आपकी समातें सुनने वाली ना हो, और सच पूछें तो रिश्ता या रिश्ते जो है ना हमेशा खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते जो है ना सिर्फ अगर इस बात को मैं यहाँ ये ठीक बोलूँ तो कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास के होते हैं, कुछ सिर्फ एहतराम के होते हैं, और कुछ लिसनर्स, स्वीट लिसनर्स आवाज के होते हैं, और मेरा यकीन है और मेरा ये बावर है, मेरा पूरा एक ट्रस्ट है, मेरा और आप लोगों का रिश्ता भी इन्हीं खूबसूरत रिश्तों में से एक रिश्ता है, जहाँ कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई मतलब जो है ना शर्त है, बस खुलूस है, मोहब्बत है, और दिल से दिल तक पहुंचने की एक सच्ची कोशिश है। इसलिए जब भी मैं माइक ऑन करता हूं तो यूं महसूस होता है जैसे मैं किसी स्टूडियो में नहीं, बल्कि जो है ना आप सबके दरमियान बैठा हूं, आपके साथ हंस रहा हूं, आपके साथ मुस्कुरा रहा हूं, और कभी कभी आपके दिल की वो बात भी कह देता हूं मैं जो शायद आप खुद भी लफ्जों में बयान ना कर सकें। मेरे प्यारे लिसनर्स, ताहिर जमान यहां ये बात करना चाहेगा, और यही तो हमारी महफिल के एक हसल हुसन है, या मतलब जो है ना असल एक खूबसूरती है, यही तो हमारी इस महफिल का असल हुसन है, यही तो तेरी और मेरी बातों का खूबसूरत सिलसिला है जो हर रात एक नए एहसास के साथ जुड़ता है, और हर मुलाकात के बाद पहले से ज्यादा मजबूत और पायदार बनता है। स्वीट लिसनर्स, जरूर आएगा 0334-0976-976 इस नंबर पे, आपने अपने होने के एहसास दिलवाने हैं। पश्तों के टपे प्रोग्राम में शामिल करने लगा हूँ जी, दिल से दिल तक पहुंचने वाले टपे हैं, आई होप कि आप इन टपों को एंजॉय करेंगे, मेरे साथ रहिएगा और अपना साथ मेरे साथ जरूर शामिल कीजिएगा, तभी हमारा ये साथ मुकम्मल होगा। खुले उनते टपे दीजिए, एंजॉय की दया खोले खुले और कुले टपे जी, और टपो न बाद ब्याराजू और ब्या वापस चिराजू नोस्ता मैसेज में प्रोग्राम के शामिल होगा 0334-0976-976 बने।

अच्छा लिसनर्स, ये ट्रैक तो ये मेरे ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई, ये वाला ट्रैक हम सुन लेते हैं, इसके साथ हम इजाजत भी लेंगे, इजाजत चाहते हैं।

स्वीट लिसनर्स, मैं आप दोस्तों से आप लोगों से इजाजत ले रहा हूं और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, अब इजाजत का वक्त आ रहा है, लेकिन इजाजत का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये रिश्ता खत्म हो रहा है। ये सिर्फ एक वक्फा है, एक मुख्तसर सा ठहरा हुआ है, क्योंकि आवाज का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। ये तो दिलों में रह जाता है, ये तो एहसास बन के साथ चलता रहता है। आज की ये महफिल, ये लफ्जों की ये नशिस्त, ये तेरी और मेरी बातें, ये सिर्फ जो है ना एक प्रोग्राम नहीं था, ये एक एहसास था जो आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। अगर मेरी किसी बात से आप हर्ट हुए हों या किसी बात ने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी हो, अगर किसी जुमले ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर किसी लफ्ज ने आपको अपने किसी करीब के लम्हे में ले जाकर खड़ा कर दिया हो, तो यकीन जानिए कि यही मेरी असल कामयाबी है। और सच यह है कि आवाज कभी रुखसत नहीं होती, ये सिर्फ जो है ना फिजा में बिखर जाती है और फिर किसी न किसी दिल में जाकर दोबारा जिंदा होती है। और शायद कल आपको किसी लम्हे मेरी ये आवाज याद आ जाए, शायद किसी खामोश रात में आपको ये अल्फाज फिर सुनाई दें और आप मुस्कुरा कर कहें कि हाँ, ये वही एहसास है जो दिल को छू गया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ रहेगा, जिद रहेगा, खुश रहेगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में यानी कि ताहिर जमान की दुआओं में आप हमेशा शामिल रहेंगे। अगर इन बेवफा सांसों ने वफा की जिंदगी ने बेवफाई ना की, तो फिर मिलेंगे सेम चैनल सेम पैनल। तब तक के लिए जहां रहिए, जिधर रहिए, खुश रहिए, तल्दी पाकिस्तान यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। द अल्लाह पामान एंड लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।